एतन होती खाक मिमाणी गोर करे एतन होती खाक निमाणी गोर करे अज मिला शेख फरीदा तक मुकुंजड़िया अज मिला शेख फरीदा तक मुकुंजड़िया मनो मचंदड़िया जे जाना मर जाइए कुम ना आइए झूठी

लास करे जीवन पर कारण लोचन कछु न सोझे कह कबीर सोरे प्राणी कह कबीर सुनो रे प्राणी छोड़ो।

darling. जियो तो व्यवहार है जको तो जानो जियो तो व्यवहार है जको तो जानो नानक हर गुण गाए सब सुख समान हर गुण गाओ मना सदगुरु सेव प्यार।

पाशा पा उमराव खान ताए डेरे जासी रंग तुरंग करीब मस्त रंग तुरंग करीब मस्त सब लोग सिधासी कावे से कुसाए खान सबे उठ जासी मुकाम कर बैठना।

सब लो भरते फिरते बहुत आयो कल खोर समुद्र में मूड थे कब हूं मिट है नीरे पछतायो तत्व विचार यह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो जप्यो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ अनुगुरु नानक पातशाह अनुगुरु अर्जुन देव पातशाह जी का पवित्र पावन नाम रसना से लिया है और नेड़े कोई संकट भी आएगा तो 84 लाख जून तू बच जाएगा तो प्यार नाल सारे आखो अनुगुरु अर्जुन देव गंगा जी असी गुरु की संगतों के सेवादार पातशाह हुक्म करो हलो कह लगे गंगा जी फिर कड़ा प्रसाद ही देख पिया कड़ा प्रसाद ही देख उस आटे भी नहीं बना अब गुरु की संगता की सेवा करनी है अपने हथी पहला चक्की पी दैनी गुणा वाली मां जगत माता माता गंगा जी अज गुरु जी और संतान वास्ते आप चक्की पी आटा तैयार किया साहबा ने अपने हथी कड़ा प्रसाद की अमृत देख तैयार सोने थाल विच पाई उत्ते चिट्टा रुमाल पाया माता गंगा जी कह लगे पातशाह किसे सिख नूं बुलाइए हजूर कह लगे नहीं गंगा जी असी आप ही अपने सिर पे तो संजय पातशाह जी ने कड़ा प्रसाद की देख अपने पवित्र पावन शीश से रख चादर भी दुश्मन मारी तुरन लगे माता गंगा जी कह लगे पातशाह मैनू की हुक्म है हजूर कह लगे गंगा जी जे संतान की सेवा करनी है तो तुम भी ठंडे जल की गागर कर जिथे संगत में भुख लगी उसे प्यास तो मात गंगा जी ने सिर के उत्ते गागर जल्दी रख ली हजूर तुरन लगे कह लगे गंगा जी पखा भी ना लै लो गर्मी बड़ी तुरिया जाते अज पंजवां गुरु नानक सुरती नाम सारे करो दर्शन से प्यार नाल ती रखो धन गुरु रात दस गुरु तुरिया जाता है सिखा ने दर्शन करो नदी तो रोज तुरती है समुद्र को मिलने वास्ते पर समुद्र कदे नहीं मिलता समुद्र कदे नहीं आता पर तक लो प्यारी सात संगत

जरूर मिले। जिन्हें खोजिया मार्ग लता है, जिस सिख ने मन जोड़ के अरदास की है वो अरदास गुरु जरूर मन अरदास। असि कई भी अरदास करते हैं पूरी नहीं होती, यह कारण की अरदास करने वास्ते भी थोड़ी जी सोझी थी। अरदास करने वेले तीन चीजों का ख्याल रखना पैंदा। पहली चीज तो अरदास करने वेले यह सोचना है कि मेरी अरदास जायज है कि नजायज, क्योंकि नजायज अरदास भी हो, क्योंकि अरदास चोर भी कर। अरदास जी है चोर भी करता है, वह भी आदमी भी अरदास करता है, ऐसे अरदास जायज नहीं है। पहली चीज अरदास जायज हो, दूसरी चीज मन के अंदर यह पूर्ण भरोसा होना चाहिए है कि जिस गुरु अगे मैं अरदास कर रहा वो मेरी अरदास सुन रहे हैं। तीजा मन के अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए है कि मना मेरी अरदास भी जायज़,

साहिबा ने अपने प्यार की मिसाल कितनी सुंदर है मेरे दाता जी, दिल करे चादर की त्रिखा न उतरे हाथ न आवे, बिन दर्शन संत प्यारे जियो, हमको लीजियो गोद घुमाई गुरु दर्शन संत। मैं गंगा जी कहता हूं प्यार वाले तेरे सिख, हां गंगा जी आओ चल के छेती दर्शन। अगे गुरु की संगत कीर्तन करके ते हम आराम कर रही, साहब जी पहुंचे जथेदार को बेनती की, जथेदार जी धन गुरु नानक दिया संत वास्ते कड़ा प्रसादी देंगे। जथेदार जी उठ के बैठ के सारी संगत को सावधान किया, प्यारी सार संगत उठाओ कोई गुरसिख आया है, गुरु ने उन्हें मन में प्रेरिया है, लंगर का प्रबंध नहीं हो सकिया, कड़ा प्रसादी दे जा रही है, उठो पहले अरदास करो। जो भी गुरु वालों दात मिलती है ना पहला अरदास करो, ये अरदास करे तो वो गुरु की बख्शिश बन जाती, क्योंकि गुरु की मोहर लग जाती है, कारण प्रसादा तैयार हो अरदास करो गुरु का लंगर बन जाए, क्योंकि अरदास क्यों हुई कोई कार्य है गुरुओं की, कोई वस्तु मिली चंगी कार मिली है पहला गुरुओं की, अच्छा तेरी चंगा कर मिले जय प्रसाद दसा सुख मंदिर किसे त्याए। सारी संगत सावधान जथेदार ने गल च पला पा के अरदास की, ऐ धन गुरु नानक पातशाह तेरा प्रेमी सिकड़ा प्रसादी देख लेके आया है, सिख नू नाम दान बख्शी, सिख नू सिखी दान बख्शी। अजू कह लगे गंगा जी सेवा का फल मिल गया जी, अज सी प्रेमी सिख बन गए, गंगा का सेवा का फल मिल गया। अरदास करोगे साहबा ने अपने हथे सारी संगत को कड़ा प्रसाद देकर पेश कराया, गंगा जी हम जल भी किया साहबा के सोहने हथा जिन्हें जिन्हें प्रसाद लिया उन्हें ही जपया श्री वाहे, जल छकाया झूठे भांडे कौन मांज रहा है माता गंगा जी, वो हथ पवित्र जो गुरु घर की सेवा, जो गुरु घर की सेवा तू मांझे हैं भाई साहब जी लिखते फिर सेवा बिन हथ पैर होर मेहबल कर दी, सारे जल सकिया भुख भी दूर से प्यास भी दूर, हम संगत आराम कर रही है ते तर गुरु अर्जन देव पातशाह जी लैके पक्का कि सारी संगत को पक्का करें, पक्का कर दें प्यार क्या कि

पाव फूटी किसे राने के आसास निधि उठो तैयारी करो कमर कसे कर लो हम पहुंचिए करिए गुरुदेव सारी समय तैयार तुर पी है गुरु दे दर्शन नाले तुरे जाते नाले शब भी तारना पड़ते क्योंकि सिख जिस वे गुरु वाल तुरता है निंदिया चुगली करता नहीं शब भी तार शब नार जी ता जो उतो ही आदमी शुरू हो जाती है गुरु के दर्द से लगनी संगत तुरी जाती है नाले पढ़ भी जाती है।

से गुरु साहब से जो गुरु का हुक्म है उन्होंने चौड़ी कर स्वागत कौन है जो पति का हुक्म है लैक पुत्र कौन है जो माता पिता का हुक्म है सर सिख कौन है जो गुरु का हुक्म है जो गुरु का हुक्म अमृत छकना माड़ी पड़ी सत्संग में जुड़ना बुरे को मन छड़ना चाहिए ही अपने बनी ये गुरु का हुक्म है गुरु का सिख मन के सिखी की रोशनी चला जाता है फिर जिथे सिखी की रोशनी है उथे गुरु सतगुरु का उपदेश बनावे जिस वे छे पौड़ियां चढ़ जाता है छे क्लासा पढ़ जाता है तो भाई साहब जी कहते वो कौन बन जाता है फिर भाई साहब जी कहते वो गुरमुख बन जाता है भाई साहब जी कहते गुरमुख सोई जो सहज उन सहज अवस्था की प्राप्ति बार दूरियां संगत दूर नेड़े चल के आई संगत आप भी धन हो इतों के प्रबंधक भी धन होर भी कई दूजे गुरुद्वारा साहब के प्रबंधक गुरुद्वारा रामगढ़िया हाल सेवकों ने पिछले टूर के उथे भी कीर्तन द्वारा हाजरियां पड़िया बड़ी संगत जुड़ती अब गुरमुख माई पाई एक आए उन्होंने दर्शन करके मेरा लूह नू पेट कर नहीं तो कई थावान से साढ़े अंदर कमजोरी आ जाती कि मैं फलाने गुरुद्वारे नहीं जाना फलाने गुरुद्वारे और सिख जिसे गुरु का नाम आ जाएगा गुरु तो एक ही है कोई ना चीजा मैंने बड़ी खुशी हुई मालक मेहर करे वस्तु सामू सदा ला के गुरुद्वारे बेशक बना लो कोई हर्ज नहीं गुरुद्वारे बनाने वाली चीज नहीं है पर गुरु का जो निशाना है वो साडा एक साहब श्री गुरु साहब जी की पूजा गुरु की संगत गुरु नानक का नाम गुरु नानक की बाणी गुरु नानक का ध्यान जब सत्संग से जिते चार चीजा हो गई बाबा आनंद सिंह जी महाराज कहते सर उ गुरु नानक जरूर हो गए अच कोई समा ज्यादा हो गया है पर ज्यादा होया जाया नहीं क्योंकि अब इस वीक का बनाया प्रोग्राम आखिरी कीर्तन से रात का तो कोई समा चढ़ गया अब सवेरे जिस वे कीर्तन का भोग पाया तो गुरु प्यारे बैठे सामने कह लगे भाई साहब पिछली साल वाली साखी तुसी किधरे अफ्रीका नैरोबी कीती सी ते काफी रिकॉर्ड हुई ते वो साखी सुनी है चित करता है फिर फिर सुना दे उन्हां दा हुक्म सचे है क्योंकि बाबा जी दे पिंड दे नेड़े ही रहण वाले सौकिया दे रहण वाले उन्हां दा हुक्म ते तुहाडा प्यार पिछली साल वाली साखी आप जी ने समा कुछ ज्यादा होया तो समा सफल है आई करी लगती जो सौ बार भी आवे तो तुहाडे प्यार को वेख के सेवक का चित बड़ा प्रसन्न है नहीं तो इतना चिर बहना बड़ा कठिन अरे गुरु की बख्शिश है यही रहमत है गुरु की जो साडा मन गुरु नाल जुड़िया है तो आओ अरदास करिए अनुभव वर्जन दे पातशाह साढ़े से बख्शिश करो ये जड़िया मंजिला हैं गुरमित्री दे गरीबी ये सारिया पौड़िया असि मंजिला से चढ़ने की कोशिश करिए आस्ता आस्ता ये दाल ये मंजिल साढ़े भी मुक जाए तो साड़ी मनु यात्रा खत्म साधा जीवन अनंत साहब का पाठ करके कीर्तन की समाप्ति करी अमृत वेले का

मानस जन्म अमोल कृपायो, दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, दुर्लभ जन्म चिरंकाल पायो, जात्यो कौटी बदला काठूरी को गाहक आयो, लाद्यो काल बिरख जिबा आयो, लाभ लापन के ताई आयो, लाभ लापन के ताई, मोहन ठगौरी क्यों उर्ज पहा, मोहन ठगौरी।

से अगली जो पंक्ति है ना बहुत जरूरी है। एक गुरसिख दे कर्तव लई है, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजय व्रत घोर मड़ी मट भूल न माने। आओ सारे पढ़िए जी।

अब मुहे नाच नो ना आवे, मेरा मन मंदरिया ना बजावे। ये पाम ने शब्द शरण किया है। आओ एक जो कि ज्ञानी ज्ञान सिंह अलमस साहब जी की बहुत ही सुंदर रचना, जो आप जी ने पंथ विच बहुत ही गायन की है, जो उन्हां दी सब तो पहली हरमन प्यारी जिथे भी कीर्तन करते सन वो रचना संगत विच जरूर सुनाते सन, तो बड़ी कठिन है। आप जी उहदी लिखतकारी ते बंदिश दी बनावट आओ अड़ाना बहार दी बंदिश है श्रवण करनी कि किस तरह धूम परी जगत में तुमरी। ये आम नहीं किते भी गाई, पहली बारी जा किते किते इस बंदिश असां ने गाई है, तो ध्यान देना इहदी रचना पहला आप श्रवण करो, बोल जो बड़े औखे ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की शिफत की है, ध्यान देना ब्रिज भाषा की ते संस्कृत की चीज़ है, ध्यान देना। धूम परी जगत में तुमरी, महाबली भीम कंप्यो थर हरे गदा त्याग, चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही, घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो। इसनू उन्होंने कंपोजिशन बनया है, ध्यान देना। इस चीज़ नू इन्नी औखी पढ़न विच औखी है, पर इसनू उन्होंने बंदिश का स्वरूप दिता है, बड़ा आनंददायक चीज़ है, ध्यान श्रवण करना। धूम परी जगत में तुमरी, महाबली भीम कंप्यो थर हरे गदा त्याग, चक्रत पयो डंका बजयो रणजीत पे जब ही, घना नाना नाना कर शब्द प्रगट पयो, कंप्यो तरणी तर, कंप्यो तरणी तर धरती कंब गई, कंप्यो तरणी तर थारा रारा रारा कर इंद्रपुरी, धूम परी जगत ने तुमरी। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी आनंदपुर विच जय जयकार हो रही है, सारे पासे धुम पै गई, तो इंद्र दा दरबार ते वड्डे वड्डे भीम जिहड़े द्वापर युग दे विच बड़े बड़े बली सन वह भी कंब गए, गदातार वड्डे वड्डे भीम वर्गे अर्जुन वर्गे सारे गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी शुभ तो स्नान देख के उपरों धरती कंबण लग पी, आकाश कंबण लग पिया गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की इन्नी चढ़त है। अगला पहरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। तीर पातशाह की किस तरह चलते हैं, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, छडत तीर कलगी तर, शाना नाना नाना नाना शनक शोम कार, छडत तीर कलगी तर, सरा रारा सर के जावत तीर, सरा रारा सर के जावत तीर, छतियां चीर दुष्ट सबन के तरफ तरफ निकसे प्राण, धागे रघबीर महावीर रण तीर की गिरत पगरी, धूम परी जगत में तुमरी। तीसरा पैरा बड़ा सुंदर है, ध्यान देना। चक्र चलत खंड खंड रुंड मुंड कर, खंडा खड़ग तुपकत बर महा जोद दुष्ट दमन करे। चक्र न्यांग सिंह धमाले ते चक्र पाउंदे हन, ते जदों रण मैदान च लोड़ पैंदी है शास्त्रां दी, ते जदों वो आखरी शास्त्र धमाले तो ला के ते चक्कर मार के सिर ला दिंदे सन। चक्र चलत खंड खंड चक्कर चल रहे ने, चक्र चलत खंड खंड रुंड मुंड कर, खंडा खड़ग तुपकत बर महा जुद्ध दुष्ट दमन करे, गंधर्व अलमस्त के प्रभु की जग धूम परी, डरत पई शिवपुरी पेख आनंदपुरी। ब्रह्मपुरी शिवपुरी इंद्रपुरी सारे देवत्या ने पुरियां हैरान हो गया, तो डरन लग पिया आनंदपुरी देख के, तो और ये रचना बड़े आनंद के नाल प्यार के नाल साहिब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उस्तत अलमस्त साहब जी की रचना बड़ी

तिलन काफी दे विच ए शब्द गुरु तेग बहादुर साहब जी दा चेतना है तो चेत ले निस दिल में प्राण सतगुरु गुरु तेग बहादुर साहब जी ने इस शब्द दो राग विच गाया तिलन ते काफी दो राग मिक्स कर दो ये कितने मिक्स करना है तुसी अपन जी आप सरन करोगे आओ तिलन काफी दाई पावर।

और सत्संग जीओ। जो बच्ची का जन्मदिन है, बच्ची अविनाश कौर, गुरु उसनु उम्र दराज करे, विद्या दान बख्शे।

गंभीर प्रकृति का राग है। विदक दी आत्मा कृपा दी जाचना करती है, ध्यापे दी खोज करती है। इसलिए इस राग विच गुरु साहबान ने मन, मत, बुद्धि, आत्मा, मौत, मुक्ति आदि गंभीर विषयां विच गुरबाणी उच्चारण की। श्री गुरु ग्रंथ साहब विच सब तो वध बाणी इसे ही राग विच है। सुखमनी साहिब अते बावन अखरी जीवन दे सारे ही मतां दा तत दर्शाउंदियां हन। भगत कबीर जी दी सब तो वध बाणी इसे राग विच है। श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दा फरमान है, गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे, पाने चले सतगुरु कह ऐसा सिगार करे। गौड़ी दियां 12 वनगियां श्री गुरु ग्रंथ साहब जी विच हन। जो दो शब्द हुण आप सरवण करोगे उन्हां विच गौड़ी दे जो सुर लगाए गए हन वो हन ऋषभ अते धैवत कोमल अते बाकी सारे शुद्ध स्वर। गायन समा रात दा प्रथम पहर। पहला शब्द सरवण करो भाई गुरदेव सिंह खालसा जी पासों। शब्द दे बोल हन, गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे। दूजा शब्द है प्रोफेसर हरचंद सिंह जी दा गाया होया। बोल हन, थिर कर बैसहु हर जन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे। पहला शब्द गौड़ी राग सुलखनी जे खसमै चित करे।

गाहे न नेकी कार करदम ममकी जिनी अहवाल। बदबख्त हम चो वकील गाफिल, बदबख्त हम चो वकील गाफिल, बेनजर बेबाक, बेनजर बेबाक, नानक विभोय जंतुरा, तेरे चाकरां पाखा, नानक।

पिता को अपना प्रेमी देखा चलिए जारणा नामी खैर जगता काज कार बंडिए मजाक के ना के सरक के दे दीजिए मूठे ना।

0: का सदिय चिंता कर कह सकती है मैं चिंता भी कहता है चिंता पूर्ण पाती पाना है सजाए अंदरों तूठे तय पार दुनिया कर है हट शक्ति
1: एक बार अंदर पार।

हर हर सोमर सिंह गुरु मन भाव जिसनु दयाल होए मेरा स्वामी तिस गुर सिख गुर उपदेश सुना तिस गुर सिख गुर

खड़ग तुपक तबर अर तीर शैव सरोही शैथी ये है हमारे पीर। तीर तू ही शैथी तू ही, तीर तू ही शैथी तू।